0: हाथियों को तो पोइंटे ये माँ को है उनके साथ भाषा की तो पोइंटे ये कितना मो पकाना कितना भाषा कितना आने तो पोइंटे ही भाषा की तो पोइंटे supaya
1: tetap kita memakai bahasa ini memakai
0: sampai nganak-nganak pulang tetap gal